0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी वंश कुतु सेकर, स्वामी वंश उतानु सेकर, स्वामी वंश नवत वडिन सेकर।
0: एहिन प्याननी उन्वांश के मरणय तुत्तान्य सीपत कर्मिन जीवनदायक पूप्यात गैलवीम दायक कुशलाना तपय बट पुद करम ओबाहम सिटमिन ओबट सेवे खरानट अप सुदुसान वचिन सल की मगन अप योबट तुति पुदमो क्रिस्तुन महंस के श्री सर्रेटत श्री रुधिरेटत सहभागीवन अप सम शुद्धात्मनन विसिन एकसत करनु लबन लेस अपि अवनतवा आयद सिटिमु स्वामिनी मुल्लु वेई पेतर पवत्ना ओबगे सुदो स्वभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगरद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम स्वभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत्त ऐतिव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद उबगे दयनुकम पावकरे विश्वासे तबम नेसुवन कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयनुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमर्यावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन्हि उबगे कैमत्ते इटुकल सीलु शुद्धवंतेइंद समग अपि सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदुस्सन कल मैनव तवद उन्हा समग ओबट प्रशांत सा किरीमटद उबगे महिमय वर्णा किरीमटद उबगे पुत्र येसुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुनु मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से केरेइद सीलु बलते देवी पियानने शुद्धात्मनन हा समगे क्वेड वसन्ना वू उब वहन्सेट सकल गौरवयात महिम